0: यमन्यन जीवाय पा चाचुआ मोदी यमन दलंग तिल चरल या संज बोति लिन दिगल मुजोय भजोय री बदल मुजु कलाज नो वायमन तमर युगी कयामास हालो रेसास अमर सैदी मास हबीबो इंदल यमन निलाय कोलंग लल दिगल मुटों तुले नम को दिगल निम्मी कुवै रज टेबुल जगने मिस्किन फायमन मा सफनो बिलेन दिगल अमर मुलेन मंचुन मुरी फुकिवेर अगियार अमल लीला सगत खवायमन हम जम्मी बेस मास इनलो लिसान वार कीम को नयो येवल मास नगई नलो मिरम नयांग फियमन यनल तबान चु सुकुरात योंगाई नलो बना कुरेत मारम साथ भैया पुजी योंगाई नलो फियमन जलु कबामुन मास योंनं बफातुन मास योगन मदीन मास किन्नल उल यांग फियमन देलु कबा मोति फिसा ना को यगल ने सिलेसा सूफची मयों नें इलेसा मुची दलो हवा यमन केरल मास किन्न यमन तभी चेगीरा लुब यमन मोलें पिदें यम चेंद दोन जिसने वंदे लुफा यमन केरल मास किन्न यमन तभी चेगीरा लुब यमन मोलें पिदें यम चेंद दोन जिसने वंदे लुफा यमन मोलें गरत जेन यंगुन मोलें यलो लें जुगुन मोलें असमासी निरल मुलक बुब हवा यमन मुनाजिले बुदे मुरोज दिजोय बबन्ने कोज मुखे दिन्यान यंग दिलाज नाली मजें कुफे यमन नेम्रुन दकल दिलवं नदेश कुदिकी मजें बुदे न सैतान रजीम सफिल मंबिर्मी फे यमन यंदो चलो बचक बुदीस मोलें बचक बबेपुनीस मालम यारंग व्यपुदीस निर्मिर मुचिस ममुचिसं यना जवाब बचक बुदीस मालम बचक व्यपुनीस मालम यारंग व्यपुदीस निर्मिर मुचिस ममुचिसं चंगो निर्मिर मदेलशात नाको मास लीने खलात राम लंग को मनवात देमल मती न याकुमन चंगो निर्मिर मदेलशात नाको मास लीने खलात राम लंग को मनवात demal madina yakuman masjid wuluna kerok yonem babatuna kerok joye mas joyem kerok buje buko joy fayaman joy badara be bok joy gide yaman yes
1: nyal gol da nyal khalima gway chalef mani tagedamo Sering bu mak bafa tuba jali mom lañu tamo
2: 88 poesis Dakar 95 poe de Touba 94 poesis Louga Al Khamis juné ci waxtu wi sen émission ka gungen diko andak sen mbokk Mohamed Mustafa Silla